मैं बाजनाथ। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सत पुरखा, बिनो कराऊं गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रकाश। मेरे मीत गुरुदेव, मोको राम नाम प्रकाश। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सें, मिल संगत गुण प्रकाश। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगाश। राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित मैं उदम। जाया हर हर जियो परया, सैल पत्थर मैं जंति उपाय। ताका रिजक आगे कर तरिया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सोत बनता, कोई ना किस की धरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मान पौ करिया। उड़े उड़े आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग यासा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सत गुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम्मा अगामे अपारा। सब त्यामे सब त्यामे तुद जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्याओ संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हारे आपे ठाकुर हारे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिने अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुणे आख वखाणा। जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी। से मुकत भए, जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जमकी फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी।

परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हरि अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करें हर पूजा जी, तप तापें जपें बेअंता, तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी, कर करिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावें मेरे हर भगवंता, तू आद पुरखे अपरंपर करता जी, तुद जे वडियवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तुदे आपे भावे सोई वरतै जी, तू आपे करह सो होई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाय जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता चार मैंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हम पाई रहाओ, सब तेरी तो सबनी त्याया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुझे आप विछोड़िया आ मिलाया,

पहला तेत सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तने किया पंकज मोह पागनी चाले हम देखा तहें डूबियले। मान एक ना चेतस मूड मना हार बिसरत तेरे गुण गले आ रहा हो। ना हो जति सती नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तन की शरणा जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवां पई।

नाम सरंजाम लाग पवजल तरण कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध न जानया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा कभी उबाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करे है सब रण को वा संघरे है पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ जो बर चहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारियां चुन चुन शत्रु हमारे मारियां आप हाथ दे मुझे उबरे है मरण काल का त्रास निवरे है हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तो जो करे और अच्छा

खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले उबारी। सरब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते ले उबचाई। सवैया

एक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र भेद सब है, बो भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोए बखान्यो। दोहरा सकल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाजवास।

आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईया, शब्दोता गावो हरी केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार यो करे तेरा, कार्ज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे, करता तेरे सब किश है, जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान।

दारु वाजे पांच शब्द तित कर सभागे, कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन कहो से नाम हर कह लागे। कह नानक ता सुख हुआ तित कर वन हद वाजे। आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी, संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जाने।

ताम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवां।

होई, तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवै हरिया, तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन

ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

बेदियले गोपाल गोसाई मेरा प्रभ रवैया सर बैठाई। धन वाहिगुरु साहिब जी।

गुर हाथ धरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गोर नाम दियो रिन लाथा, मेरे ही अरे रतन नाम हर बसया, गोर हाथ धरियो मेरे माथा।

मेरे मन भज राम नाम सब अर्था गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नाम जीवन वृथा रहाओ बिन गुर मूड पे हैं मन मुख ते मोह माया नित फता तेन साधु चरण ना सेवे काबहू तेन सब जन्म अकथा जेन साधु चरण साध पग सेवे तेन सफल।

सनक को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चले मार्ग पंथा हम अंधले को गोर अंचल दीजै जन नानक चले मिलंथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चले मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजै

श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लिंग त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास राम दास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदया वै ताय। सब थाई हुए सहाय सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज। सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ। दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां। चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अणडिट कीता। तिना प्यारिया सच्यारिया जी की ने कमाई का ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित सीस दिते। बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नल चरवाए। गुरद्वारियां की सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा स्वासा संग निभाही भाणे नूं मिठा करके मन्निया। तिना सिरकवाना समूह शहीद सिंघां सिंघणियां जी की ने कमाई का ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां का ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चेतावे चेतावन का सरका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चेतावे चेतियावन का सरका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी के इशनान। चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अंतरजामी। पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां तों जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे। खालसा जी नूं बख्शो जी हे ने माणिया दे माण। नेताणिया दे ताण न्योटियां दी ओट न्यासरियों के आसरे। सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी के पावन चरण कमलां पास अरदास बेनती जोदड़ी। हे कृपालू शहनशाह आप जी की मेहर सदका आप जी की पवित्र हजूरी दी अंदर संध्या काल दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर आप जी की रब्बी बाणी दे पठन पाठ गुरबाणी कीर्तन कथा विचारा ढाडी बारा गुर इतिहासिक विचारा हुईयां ने महाराज। समुचा प्रोग्राम आप जी की पवित्र हजूरी अंदर निभाउंदियां हुईयां बेअंत प्रकार दीआं भुल गलतियां आप जी ने बख्श लैणियां। अगाम वास्ते समत बुद्ध मेहर करके बख्शिश करनी। पढ़ी सुनी बाणी ते इतिहास दे अर्थ भाव आईआं हुईआं सर्बत संगतां दे हिरदिआं विच वसाउणे मेहर करनी महाराज। सजे हुए दीवाना अंदर इस वक्त बेअंत संगतां ने आप जी के चरणां दे विच हाजरियां भरियां ने। सर्बत संगतां दीआं हाजरियां भेटावां दर प्रवान करनियां। चल के आए हुए कदम कदम लेखे विच लाउणी अरदासां बेनतियां भावनावां गुरमत मुताबक परिपूर्ण करके दरों घरों गुरसिखी सिरक भरोसा नामदान मेहर करके बख्शिश करना। सरबत संगतां दे परिवारां दे किरत कमाइयां च बरकतां कारोबारी तरक्कियां वाधे मेहर करके बख्शिश करने। दुखां दर्दां दरिद्रां बिघनां दा नाश घरां विच सुखां दा प्रकाश। देशां विदेशां विच विचरदिआं सिर ते मेहर भरिया हथ रखना दरों घरों शरीरक तंदुरुस्ती दे रोगता चढ़दी कला दीआं दातां बख्शिश करनियां। परिवारां विच परस्पर प्रेम प्यार मेहर करके बख्शिश करना। बच्चिआं दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखदिआं होइआं बच्चिआं नूं लंबी आयु बच्चे माता पिता दे आग्याकार देश कौम दा प्यार नाम बाणी दीआं रहमतां चढ़दी कला दा जीवन मेहर करके बख्शिश करना।
ਐਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁਲਚਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਖਸ਼ੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਪਜੀਕਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਯਾ ਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ।

बिन गुर मूड़ पए हैं मन मुख ते मोह माया नित फथा। तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्मे अकथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल।

ਭੰਮਾ ਭਰਮ ਮਟਾਵੋ ਆਪਣਾ ਯਾ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਭਰਮੇ ਸੁਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਭਰਮੇ ਸੇ ਸਾਧਕ ਬ੍ਰਹਮੇ ਬਾ ਭਰਮ ਭਰਮ ਮਨੁੱਖ ਡੈ ਕਾਏ ਦੁਤਰ ਮਾਂ ਬਿਖਮੇ ਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਭਰਮ ਤੇ ਮੋਹ ਮਟਾਇਆ ਨਾਨਕ ਦੇਹੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਾਇਆ ਡੋਲੈ ਬਵਿਦੀ ਮਨ ਲਵਡਿਓ ਤੈ ਸੰਗ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਖੋ ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਰੰਗ ਪੌੜੀ ਮੰਮਾ ਮੰਗਣ ਹਾਰੇ ਆਨਾ ਦੇਣ ਹਾਰ ਦੇ ਰਿਓ ਸਜਾਨਾ ਜੋ ਦਿਨ ਸੋਏ ਕੈ ਬਾਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਰੇ ਪਕਾਰ ਜੋ ਮੰਗੇ ਤੋ ਮੰਗੋ ਵੀ ਆ ਜਾਦੇ ਕੁਸਲ ਨਗਾਉਂ ਧੀ ਆ ਮਗਨ ਮੰਗਦਾ ਕੇ ਮਾਗ ਨਾਨਕ ਜਾਤੇ ਭਰੇ ਪਰਾਗ ਸਲੋਕ ਮਧਪੁਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮਨ ਮੰਤ ਜੈ ਜਾਨਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਪੌੜੀ ਮੰਮਾ ਜਾਹੂ ਮਨ ਪਛਾਨਾ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਤੇ ਅੰਨ ਦੁਸਗੁਆ ਕੇ ਸੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਰਹਿ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਤਾਹੂ ਸੰਗ ਤਾਹੂ ਨਰਲੇ ਪਾ ਪੂਰਨ ਘੜ ਘੜ ਪੁਰਖ ਵਸੇਖਾ ਉਹਾ ਰਸ ਮੈਂ ਆਹੂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਤੈ ਮਾਇਆ ਸਲੋਕ ਯਾਰ ਮੀਤ ਸੁਣ ਸਾਜਨੋ ਬਿਨ ਹਰ ਛੁਟਣ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਤੈ ਬੰਧਨ ਕਟੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਹੇ ਪਵੜੀ ਜਯਾ ਯਤਨਾ ਕਰਤ ਭਉ ਵਿਦਿਆ ਏਕ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕੌਲਾ ਸਿਧਿਆ ਜਾਹੂ ਯਤਨ ਕਰ ਹੋ ਤੋ ਛਡਾਰਮ ਆਹੂ ਯਤਨ ਸਾਧ ਸ਼ਿੰਗਾਰਮ ਜਾ ਉਵਣ ਧਾਰੇ ਸਭ ਕੋ ਵਾਹੇ ਜਬੇ ਮਿਨ ਉਹ ਉਵਰ ਨਾ ਹੋ ਯਾਹੂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮਰਾ ਥਾਉ ਰਾਖ ਲਿਓ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾ ਥਾ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜੈ ਆਪ ਜਨਾਈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ ਸਲੋਕ ਰੋਜ ਨ ਗਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਨਵਾਣਾ ਜਗ ਰਹੋ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਲੀ ਪਾਰ ਬਵਣੀ ਰਾ ਰਾ ਰੇਨ ਹੋ ਤੂੰ ਸਭ ਜਾਗੀ ਦਾਜਵ ਮਾਨ ਛੁੜੇ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ਰਣ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸੀਜੇ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਕਾਰਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਕੀ ਨੀਂਦ ਦਾਤੇ ਸਲੋਕ ਲਾਲ ਝੂਠ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹ ਇਹਾ ਦੇਈ ਮੈਂ ਬਾਸ ਹਰ ਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਨਵਾਸ ਬਾਉੜੀ ਲਲਾ ਲਾਵੋ ਔਖਦ ਜਾਹੂ ਦੁਖ ਦਰਦ ਦਾ ਮਿਟੇ ਖਨਾਹੂ ਨਾਮ ਔਖਦ ਜਾਰੀ ਦੇ ਹਤਾਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਗ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਹਰੇ ਔਖਦ ਸਭ ਘਟ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਬਿਨ ਬੇਦਨਾ ਬਨਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਸੰਜਮ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੀ ਆਓ ਸਲੋਕ ਵਾਸਦੇਵ ਸਵੱਤਰ ਮੈਂ ਉਨ ਨਗਰ ਤੂਠਾਏ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਆਏ ਦਰਾਏ ਪੌੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਗਰੀਏ ਕਾਹੂ ਗੜਗੜ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਹੂ ਵਾਸਦੇਵ ਜਲ ਥਲ ਮੈਂ ਰਵਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਲੇ ਹੀ ਗਵਿਆ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟੇ ਤੈ ਮੰਤੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਵਰਨ ਚਹਿਨ ਸਗਲਾ ਤੇ ਰਹਿਤਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਸਲੋਕ ਹਾਂ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀਆਂ ਸਾਗਤ ਮੁਗਦ ਜਾਨ ਡੜਕ ਮੂਹੇ ਜੋ ਤ੍ਰਿਖਾ ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਕਿਰਤ ਕਮਾਨ ਪੌੜੀ ਅਡਾੜਾ ਅਡਾੜ ਮਿਟੇ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਧੂ ਰੂੜ ਹੋ ਜਾ ਵਸੇ ਹੋਰੇ ਦਮਾਹੀ ਆਹੀ ਡਾੜ ਮਿਣਤ ਵਸਨਾਹੀ ਡਾੜ ਡਾੜ ਕਾਗਤ ਗਵਾਰਾ ਜਹੀਏ ਅੰਗ ਮਧ ਵਿਗਾਰ ਡਾੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਡਾੜ ਮਟਾਈ ਨਿਮਖ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਈ ਸਲੋਕ ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨ ਓਟ ਖਾਓ ਉਗਤ ਸਿਆਣ ਪਤਿਆਗ ਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਜੈ ਮਨ ਬਸੇ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਬਾਉੜੀ ਸਸਾ ਸਰਨ ਪਰੇ ਅਵਿਹਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਬਕਾਰੇ ਸੋਧ ਸੋਧ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛਡਕਾਰਾ ਸਾ ਸਾ ਸਾਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੀ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਗੰਧ ਪਾਰੀ ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲਕ ਪਾਲਾ ਸਲੋਕ
खुदी मिटी तब सुख पाए मन तन पाए रोगा नानक दृष्टि आया उतद करन है जोग पौड़ी खखा खरा सराहू ताहू जोखिन मैं ऊने सुवर पराहू खरा न माणा होद परानी अंधन जाबे ब्रह्म निर्बानी पावे खदम ता ऊहा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगान संघ कदे खिन बख्श निहारा नानक साहब सदा दियारा सलोक सद कहो सुन मन मेरे सरन भरो हर राय उगद सियाणप सगल त्याग नानक लय समाये पौड़ी सत्सा सियाण पछाड़ी आना हिकम दुकम न प्रो वधे आना सहस पाद करे चतराई संग तुहारे एक न जाई सौ सौ जब दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लाभे जय आपे नानक ताको दुख न ब्यापे सलोक हर हर मुकते बोलना मन बूठे सुख होई नानक सामे रब रिहा थान थन अंतर सोए बौड़ी हेरू गड़ गड़ सगल गे भूर रहे भगवान हो वध्याए साध सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हो छुटके हो नंद तै हो नाही तै आप हते दुख जन्म है मरन संत संग प्रताप हित कर नाम दे डे दयालो संता संग होत कृपाला ओरे ना कहनू किया ओरे कछु ना कहनू किया नानक सब कुछ प्राप्त हुआ सलोक लेखे कते ना छुट्टी है खिन खिन भुलन हार बगसन हार बगस लाए नानक पार उतार बौड़ी लूण हरामी गुनागार बगाना अलप मत ज्यों बिन जन सुख दिए तह न जानत दत लाहा माया करने दै दे ढूंढन जाई दीन हार दतार प्रभ निमक न मने बसाई लाल जूड़ बकार मौ संपै मन माही लामट जोर निंदग महा तेनू संग बिहाय तुद पावे ताम भगस लै खोटे संग करे नानक पावे पार ब्रह्म पहन नीर तरे सलोक खाद पीत खेल तहस्ता परमे जन्म अनेक पव जल दे काडो प्रभु नानक तेरी डेक पौड़ी खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए खेद मिटे साधु मिलत सतगुर भजन समाई खिमा गई सत सांझ्यो गायो अमृत नाम खरी कृपा ठाकर भई नंद सुख विश्राम खे बनवाई बहुत लाभ कर आए पतवंत खरा दलासा गुर दिया आए मिले भगवंत आपन किया कर आप आगे पाछे आप नानक सो सराइए जय घट घट रहा ब्याप सलोक आए प्रभ धन नागति कृपा निद दयाल एक अगरार मन बात नानक होत निहाल पौड़ी अखर मैत्रा पवन प्रभ तारे अखर कर कर भेद विचारी अखर सातर सिमद पुराना अखर नाद कथन वख्याना अखर मुगत जुगत भय परमा अखर मुगत जुगत भय परमा अखर कर्म किरत सोच धर्मा दृष्ट मान अखर है जेता नानक पार बनाव निरलेपा सलोक आद कलम अगम मद लिखावती और जरियो सब संग नूप रूपावती उस्तद कह न जाए मुखो तुहारिया मोही देख धरस नानक बलिहारिया पौड़ी हे अजोध हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूर्ण हे सर्वमय
दुख भंजन गुण दास। हे संगी हे निरंकारा हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार, हे संतां के सदा संग निदारा अवदार। हे ठाकर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजे नाम दान राखो ही परोए। श्लोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वर, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधव सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसे, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव सांध सद बुद्ध मूर्त, गुरुदेव पार्थ वर्षपरा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मंजन परंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पत पवित करा, गुरुदेव आदि जगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उतरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कार। इहो श्लोक आद अंत पढ़ना। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन मह मटाव। सिमरो जास बसम भरे कै, नाम जपत अगंत अनेक। वेद प्राण सिमर सुधाखर, किने राम नाम एक आखर। किनका एक जे जी बसाव, ताकि मैं मंगनी ना आव। कांकी एक दर्श त्वारो, नानक गुण संग मोहे अधारो। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन बस राम रहो। प्रभ के सिमन गर्भ न बस, प्रभ के सिमन दुख जम नस। प्रभ के सिमन काल पर हराय, प्रभ के सिमन दुश्मन डर। प्रभ सिमरत कज बिघन न लाग, प्रभ के सिमन अंधन जाग। प्रभ के सिमन भवना व्याप, प्रभ के सिमन दुख न संताप। प्रभ का सिमन साधक संग, सर्व निधान नानक हर रंग। प्रभ का सिमन निध सिद्ध नौ निध, प्रभ का सिमन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ का सिमन जपता पूजा, प्रभ का सिमन बिन से दूजा। प्रभ का सिमन तीर्थ शनानी, प्रभ का सिमन दरगाह मानी। प्रभ का सिमन हो सुपला, प्रभ का सिमन सुफल भला। से सिमरे जन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। प्रभ का सिमन सब दे ऊंचा, प्रभ के सिमन उदरे मूचा। प्रभ के सिमन तृष्णा बूज, प्रभ के सिमन सब के सूज। प्रभ का सिमन ना ही जम त्रासा, प्रभ के सिमन पूरन आसा। प्रभ के सिमन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद मैं समाए। प्रभ जी वसे सादगी रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरे से तनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते। प्रभ को सिमरे से जन परवान, प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरे जे मैं बेहमता जी, प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदाय बनासी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। प्रभ गो सिमरे से परपकारी, प्रभ गो सिमरे तिन सत बलिहारी। प्रभ गो सिमरे से मुख सहावा, प्रभ गो सिमरे तिन सुख बिहावा। प्रभ गो सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ गो सिमरे तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरे ते नंद कनेरे, प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे।
संत कृपाते अंतन जागा नानक सिमन पूरे भाग। प्रभु के सिमन कार्ज पूरा प्रभु के सिमन कबून अजूरा। प्रभु के सिमन हर गुण बानी प्रभु के सिमन सहज समानी। प्रभु के सिमन नहीं चले आसना प्रभु के सिमन कमल बगासन।

0: सच तां पर जानी जा तुम तीर्थ करे निवास, सतगुरु न पुछ के बैरे करे निवास। सत सत सबना होए दारू पाप कड्डे तोए, नानक बखाने बेनती, जिन सच पल्ले हुए पौड़ी।
1: दान पौड़ी भगत ने मन पाउंदे
2: दान महिंदा तो लिखा हो।

सच में अच्छे साच रही, सुख सस मवैर गहर भरपूर, राम नाम दिवा मैं सूर। नायल प्रशद जाए नानक तो मुखंतर पाए, जिमें जूड़ छली चंद्रावल कानी कृष्ण जादू पया पार जात गोपी ले आया।

द्रौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दोख पर अंग रोग ए तन ते सगल दूर कीन ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दोख और अंग रोग ए तन ते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर शोर बिखिया ते गुर को शब्द मेरे ही रह दीन रूप अनरूप मोर कछु न बिचारियो प्रेम गयो मोह हर रंग पीन पेखियो लालन पाड़ बीज खोए अनजिता हर के पतीन।

गुर प्रसाद रतन हर लाभै, मिटै अज्ञान हुए उजियारा रहाओ। रवनी रवै बंधन नहीं टूटै, विच होमै भरम न जाई। सतगुर मिलै ता होमै टूटै, ता को लेखै पाई। हर हर नाम भगत प्रे प्रीतम, सुख

0: अमृत है सदगाव है, देखो अपनी शोभा लोरा है, साध संग है हमें शोर है, देखो जन्म मरण ते डरा है, साध जना की सरणी पर है, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, सत्संग जा का मिटे अपमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गनिये सब थे ऊंचा, क्या का मन हो सगल गिरीना, हर हर नाम दिन कर कर चीना, मने अपने दे बुरा मिटाना, पेखे सगल से साजना, सुख दुख जन समदृष्टेता, नानक पाप पुन नि लेपा, निर्धन को तन तेरो नाओ, निथामे को नाव तेरा थाओ, न माने को प्रभु तेरो मान, सगल कटा को देवो दान, करण करावनहार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत में जानो आपे, आपन संगा प्रभरा थे, तुमरी उस तुम ते होए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म में शेष धर्म, हर को नाम जब निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जसन रसन मखानी,
1: सगल थान ते हो तम थान, नानक दे कट बसे हर नाम, सलोक निर्गुण आरे अन्या, सो प्रभ सदा समाल, जिन किया तिस चीत रख, नानक निभी नाल, अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरानी, कवन मोलते कवन रिस्तानी, जितू साई सवार सिंगारिया, गर्भ अग्न में जिन उबारिया, बार बविस्ता दूजे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद पया उपर साग सैन, मुखा प्याओ बैठ को दैन, एहि निर्गुण गुण कछु न बुझे, बख्श लियो तो नानक सीजै, जे प्रसाद तारी उपर सुख बसै, सुत परात मीत बनता संग हसै, जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमला, जे प्रसाद भोगे सब रसा, सगल समगरी संग साथ बसा, दीने हस्त पाव करन नेत रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना, ऐसे दोख मुड़े अंध व्यापे, नानक काढ लियो प्रभ आपे, आदि अंत जो राखन हार, ते स्यों प्रीत न करे गवार, जाकी सेवा नव निद पावे, ता स्यों मूड़ा मन नहीं लावे, जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ता कोई अंधा जानत दूरे, जा की टैल पावे दरगह मान, तुसै बिसारे मुग्ध अजान, सदा सदा फूलन हार, नानक राखन हार अपार, रतन त्या कौडी संग रचै, साध छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिस पर हरे, चंदन लेप उतारे तोए, गर्त प्रीत पसुन संग होए, आंध कूप में बतत बिकराल, नानक काड लिहो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर भेख अंतर मल माया, सब सनाए कस करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ समान, अंतर यगन बार तन सुहा, गल पाथर कैसे तरे अथा, जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तीजन सह समात, सुने अंदा कैसे मार्ग पावे, कर गए लिहोड़ निभावे, कहां बुजारत बुझे डोरा, निस कहिए तो समझे पोरा, कहां बिसन पद गावे गुंग, जतन करे तो पी सुर पंग, कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तो वापस गवन, करतार करुणा मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे, संग सहाई सो आवे न जीत, जो बैराई तास्यों प्रीत, बलुआ के गृह पीतर बसे, आनंद केल माया रंग रसे, दृढ़ कर माने मने प्रतीत, काल न आवे मूढ़ चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार मा लोभ त्रोह, यहूं जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लिहो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिण सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुरी कृपा में सुख नेरे, कोई न जाने तुम रायंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत, सगल समगरी तुम रह सूत्र तारी, तुम ते हो सुआग्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै, लागे आन सो आए, नानक न सिजई, बिन नावे पत जाए, अष्टपदी दस वस्तु ले पाशै पावे, एक वस्त कारण बिकोट गुआवे, एक पीना दे दस पीहर ले, तो

आनंदेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास पारी संत संग अंतर प्रभी ठा नाम प्रभु का लागा मीठा सागल समग्री माए अनक राम नान दिष्टा है नौ निधम प्रभ का नाम दे मैसका बसराम सोन समार तैनात कह न जाय चस बंबा ते देखा साब दिखाए ना तिजन सोजी पाए सो अंतर सो बार अनंत घट घट ब्यावरिया भगवंत तरन माए आकाश प्याल सर्वलोह पूर्ण प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पणी बसंतर माए चार गुण दा दे समाए ते ते पे नहीं कोठाओ गुर पहचानन सो पाओ वेद प्राण सिमर में देख सस्य सून खतर में एक बाणी प्रभ की सब को बोले आप डोल ना कबू डोले सर्व करा कर खेले खेल मोल न पाई गुणे अमोल सर्व जोत में जाके जोत तारो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक दिन में ए बेसार सन्ना का पेखन सा ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संजना सुने सो बचन सर्व्यापी राम संग्रह जिन जाता जिसकी ये रहत साध बन साधु साहब कहत जो जो हो सोई सो मान दे करण ग्राम आप आव जान दे अंतर बसे बार भी होई नान दर्शन दे सब मोई आप सत किया सब सत ते ब्राह ते सरली उत्पात ते भावे ता करे विस्तार ते भावे ता एक अंकार अन करा लखी ना जाए जे पावे ते लहे मलाए कम निटकन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगा साप जंडाए नांद जन आप बजाए सरभूता वरतारा सर्व नैना पेकनवारा सब समग्री जा का तना आपन जा साप ही सुना आमन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया साप के मतलब तो रहे जो कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नान जा पावे तां ले समाए इस ते होए सो ना ही बुरा और कहो कि किस करा आप ला कर तू ता नहीं की आपे जाने अपने जी की आप साज तारी सब साज ओत पोत आपन संगराज ताकि गल में कहीं न जाए दूसरो सो जी पाए जिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक के जान जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभ सोए ओ तनवंत कलवंत पदवंत जीवन मोत जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जग तराया जन आवन का ए सुभाव जन के संग जिता वे नाव आप मूत मूत करे संसार नानक ते जन को सदा नमस्कार स्लो पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाऊं अष्टपारी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे सा सा सिमरो गोबिंद मन अदर की उतरे चेंद आ संत्या गोत्रंग सन्ना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सास सागर तरो हरदन के परले ओ भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम खुश सहज आनंद सास परमानंद नरक नवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमरा पियो चेचित नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दो पंजन पूरन कृपाल सिम सिम नंबार हंबार नानक जी का ए आधार उत्तम स्लो साध के बचन अमरीक लाले रतन सुंद कमात हो तार आप तरे लोग कहने स्तार सफल जिन होता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय चौदा नाद वाज जय सोन सोन अन करे प्रभगा जय पढ़े के बाल मात के माथे नान कुदरे तिन के साथ है सरन जो सुसरनी आए कर कृपा प्राप मलाए मिट गए बैर पै सवरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरदेव पूर्ण होई सेव के सेव आल जजाल बेकार ते रहते राम ना सुरन न कहते कर प्रसाद या प्रवतारी नान निभिखे बमारी प्राव की उत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमणि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बस है सोहोत निदान जिस मन बस है सोहोत निदान सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम जिस

मन बसै सो होत निदान। जा सर्व इच्छाता के पूर्ण होए, प्रदान पुपर सबल होए, सब दुज पाए स्थान। बोर न होवे अमन जान, हर तनखा जले जन सोए, नान जे प्राप्त होए, खेम शांत रिद्रम निध। बुद्ध ज्ञान सर्वते सिद्ध, विद्या ताप जो प्रत्यान, ज्ञान सिठ उत्तम स्नान। चार पदार कम प्रगास, सब के मसल ते उदास, सम सुंदर चरता का बेता, समदृष्टि ये दृष्टेता। ये फल देहन के मोह पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। ये नदान जपे मन कोय, सब जोग में ताकी गत होय। गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन बसरा। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जाके मस्त कर्म प्रभ पाए, साध सन नानक ते आए। जिस मन बसै सुने लाए प्रीत,

निर्मल सोभाय अमृतता की बानी, एक नाम मन मह समनि दुख रोग बिन स पारम। साध नाम निर्मलता के कर्म सावते उचता की शोभा बणी। नानक ए गुण नाम सुखमणि सावते उच ताकि शोभा बणी। नानक ए गुण नाम सुखमणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सकार जो सत्संग जो सतगुरु जी रहमत हो भाई रिपनदीप सिंह, बीबी नवजीत कौर, नवजीत कौर कैला, सतगुरु की कृपा शुकराने वजो अते बच्ची कीरत कौर का ग्यारहवां दिन मनाउंदिआं होइआं, ग्यारहवां जन्मदिन मनाउंदिआं होइआं गुरु महाराज के चरण परसे ने, सुखमनी साहब के पाठ आरंभ होए, संपूर्ण होए ने, आपने सरवण किए ने। जिथे आपने सरवण किए उत्थे हर सिख ने भी बाणी का पाठ करना। आप जी नूं बेनती है जरूर पाठ करिया करो, नितनाम करिया करो, बाणी नाल जुड़न दा यतन करो। सब नूं बेनती है। सो परिवार वालों गुरु के लंगरां की सेवा भी है, सो सब ने छकन की कृपालता करनी। बहुत बहुत परिवार को बच्ची के जन्मदिन दी वधाइयां। सो आओ हुण भाई साहिब भाई गुरदयाल सिंह दा जथा पौने 11 बजे तक, आप 12:30 बजे तक आप कीर्तन सरवण करोगे, उस तो बाद अरदास होएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।

नाश। राम नाम गुण गाए पंड कर्म का अहंकार काजे कुसे कर जाए पंडित राव। हका जस दली दिया लाभ पूर्ण मनोथ साभ दुखनाथ सुखार में आया संपा कमल विसाया नाम रंजन पाया दान तिजन सगन दान। संतो काया मन पूरा पाए फिर मन गाये जाए हर सतमुनी तो जीव भक्त पाए गत में तो सुप्रमय हृदय वसाई। नानक ते जनो तुम पाई रामी मल्ला पंचमा गौ कर पकड़ी आई आत प्रीत चालिनी साथ। कौ नानक जो त्याग दे ताव चनी भई सुनो संत विचार राम नमन गत ने काहे गुर पूरा पेट तो धार रहो। जब उसको कोई देवे मान तब उसको के गुमान जब उसको कोई मन पर आए तब उसे सेवा करे मुख बहरावे अंत ठगावे एक तटोर के ना समावे। मोहे बहुते ब्रह्मांड राम जनी की नी खंड खंड जो मैं पुकारे इस संग रचे कृष्णा रहे सत्या संत करे बड़वाई नानको तरे राम मल्ला पद्मा। आत्म राम शर्म पेख पुन पूरे प्रवेक रत्न मोल दे मैं जानू अपनी बहुत तू पहचानो पिय संतन प्रसाद बड़े भाव हुए तो पाई है बिन जीवा क्या जाने स्वाद राहो। अठ दस बेस ने कह डोरा कोड घास नंद से रात विज घास संगर चे जिस नहीं बुझाओ कित विद बुझे जान रहा पर जान उत्पक्त संगान।

पेयों में रोग। खोजो शांतो अर ब्रह्म ज्ञानी, विस्मन विस्मय विस्मादा, परम गत भावे असिंपुरानी राहो। गन में देखो सगल विचार, नाम न को सगे न तार, सगल भावना चले संग, पवचर्य प्रभ के रंग, दी तो ए नौत्रे मैलो, हमें बैपे दूधा फैल। हर खुद जो जन खाए, ता करो सगल मिट जाए, कर कृपा पा ब्रह्म दयालु, मंत्र के बना विसर गोपालु, तेरे दास की ओवा तूर, नानक की प्रसाद पूर, राम की महला पंचम। तेरी सन पूरे गुरुदेव, तुम दूजा नाई कोय, तुम सब पूर्ण पा ब्रह्म, सोचा पूरा जो कर्म, तुम तान प्रभ तेरु नाओ, एक सन गई मन मेरे, तुम्हें दूजा नाई ठाओ राहो। जब जब जीवा तेरा नाओ, अगे दरगे पावे ठाओ, दुखन तेरा मन ते जाए, दुर्म से राचे अरुण आए, चन्न में सो लगी प्रीत, गुरपुरे की नीत, पापा का निर्भाव, मन मुसे अमृत रसना नित जपे। कोट जन्म के काटे पाए, पहला वो सचा तन लाए, तुटना कुट भंडार, नान पाओ सोया द्वार, राम की महला पंजमा।

दारु चयो च पार सोमत सार जतवा सिमरि जय कर कृपा जय सो आपे दी जय सुजानंद रणाओ ना जपिया गौर मिलन राम गुरु मिला पंचमा सगलियान छाड़ कर सेवा सेव साजो अपनो आप सगल मंडाए मंजिंदे सी पल पाए हो सावधान अपने गुर सेवा सम सबून पावे सगल निदान गुर सेव रहो दूजा नहीं जाने कोए सरन रंजन सोए मान का करूब जानो मिलो माने मान गुर की हर टेक डकाए अवरु आसा सब लायर का नाम अगु निदान ददर के पावे मान गुर का वचन जब मानते पाव दस्तार तत् सतगुरु पे दयालु ना दास ने आरंग मल्ला पंचमा होवे सोई पल मानो अपन दाय मान जन सदा गुण गाओ पुणी सुहावन लगर संत वर जाप हो चौड़ अनुभव चौधराई गुर का जाप निर्मल मान तो निर्मल राहो एक की करवास भीतर निर्मल जाप नाम वार वारे गुर के चरण नमस्कार पौतरे पा दिन वार वंतन पारा वाह जाके का शरण दान रखना ध्यान राखना निदान नान पाए निदान वारे हर निर्मल नाम जो जब सिगत हो नान करम प्राप्त हो राम कनी महला पंचमा दुर्लभ दे सवार जय न दरगे हार अल्तवत दो बड़े आई अंत के वेल ले चढ़ाई राम के गुण गाओ हल्द बल्त हो दो सहले अचर पुरख त्यो राउ उठ दैठो अर जापो से सुख संदा भाई सब हो मीत नैमल तेरा वे चीत सब उत्तम कर्म सगल चरम श्रेष्ठ धर्म हा सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरे पार पूर्ण तेरी होवे आस जन्म गेटे तेरी पास गुर का उपदेश सुनी जय नानक सो सह सुनी जय राम कनी मेला पंचमा जिसकी तिसकी कर मानो अपन लायक मानो तिसका तू तिस जिसका तू तिसका सबको तिसरा सदा सुख होए आए भरम भरम भगन ना बिना किस काम ना आए मेरा मेरा कर बहुत पुछताने राहो जो करे मान ले ओ बिन माने रहो वेखे तुझका बन लगे मीठा गोबर साहब बिले मन उठा विपरवा गुचल आप वट पैर मत को जाप हो जित आए बिन से दुखा हल पर तेरा उजल मुखा

गर्पूरमंत मृे सकल पैत्रास पुनोयासो सेवा गुरुदेवा किम कह न जाई सचे सचे अलको बेवराओ कन करा पो तिस को सदा मन जाप किसकी सेवा करनी तो सबसे सुभव मी तो स मिरत भराओ घृणता भूत अपनवा रात अवर न कोई जनका रखा सोई कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवको दर्शन दी जय नानक जापी जप जाप सदू जा का प्रताप रम करी महला पदमा बिरता प्रवासा लो ठाकर प्रभ तेरी टेक अब झूठी सब वासो चिंडा कर पै कटे गुणता सो एक नाम त्याय मन मेरे काज तेरा वे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे राव तुम्हें कारण कर नौ चंगल मोहर सान मन तना वही ते आया अंदरू वरू दखाया तिरकी उठ दीप जग की नया जीव सिमरसार करत निदान अखो निदान सर्व के ऋण हो भी जय मन लाए मटाए मड़ी जय अन्न त्यय नाम सबल नान के काम रम कली महला पंजमा

हाँ बेकार धनते सब नसे गोपाल को जस गाओ प्राणी अगत का साची प्रभु पूर्ण ज्योति जो सुमन राहो तिस्ना भू कहु सब नसी संत प्रसाद जप्याप नसी रैन दे सो प्रभ से कुमानी अनमल ने की निशानी मिटे जाल हो प्रभ दयाल गुरु का दर्शन दे निहाल प्रभु पुरुड़ा कर्म का बनाया हर के गुण ने सुनगाया हर गे संत सदा परवान संत नमसान दस किरण पाए जे को ना तिजगी परम गए नाम कली महला पंजमा दसन को जाए कुरबान चन कमल हृदय दर ध्यान तूर संदनगी मत लाए जन्म दुर्मल जाए जिस पेट मिजैबान पाप नजरी आवे करके पापून भगवान हो गुर की जपियर ना हो अरे गुर की भाव सदा गुण गाओ गुर की सुरत निकट कर जान गुर का शब्द सतकर मान गुर जी संसार सुख दुख कदने वे तना भूख मन संतोष शब्द गुरु राजे जप गोविंद पढ़ते सब गाजे गुरु परमेश्वर गुरु गोविंद गुरुदाता दयाल भक्सिंद गुर चरणी जा का मन लगा नानक दास तिस पूरन पाग राम कली महला पंजवा किस प्रासे विचरे भवन मुड़ मगद तेरा संगी कावन राम संगीत गत न जाने अपने मन सो मित कर माने सो कर सेवो जे द्रमीत गुण गोविंद गाय दिन राति सत्संग करमन की प्रीत राहो जन्म ओंकार वर बहादुर न विख्या साधु परमात्मा दो पाया तनि जाय सतन माया कामना सुकार कमा भी जापे खावे रखन हार को दूसर नहीं कोए जो न तरे जो कृपा होए मात रमणि प्रतिरु नाम अवदास को की जय दान कर कपो गातो कर मेरी सुन गई नानक प्रभु तेरी राम गृह महला पंजवा हे लोके सुख पाया नहीं भेड़ धर्म राया दरगे सो अबंध कर्म नहीं बस संत हो जानी संत मृताई कर बाधी नर नमा पुरुष संयोग मिलाई रहो

की सच टलक मनी तवे मानो सुख सुध पुरानी जन का सबल दास डीठा न प्रभु का खटखट बूटा मिटाने सब काल कलेस जय जय तय प्रवेश पढ़ सुनो गोविंद प्रभु पूरे नाम सुंदर राम गिरि मल्ला पंच माऊ गौ को सरी सा कोडी काल हुआ मूल बकरी को हाथ प्रपाले अपना प्रभु नाले कम पीतम ब्रह्म मेरे मन सके भोगन दे राहो दिसे मास न खाए बुलाए मां कसा सूरी सट पाई

काल चक्र पेलु वचन कम शरणाय मना। राम नाम जा संग साई गुरु पाद सच ना रहो ने कह नो तबूरे काम क्रोध मासा दी जुरे कर बका जे रे के तारी का वचन त सु जाई तर तो आने के चल चल जने कोडी कोडी को काक सिर जाने।

का प्रणाम आया मंत्र त्याग गया। निंदा कर कर बहुत भूता गर्भ जोन में कृत प्या प्रभु मणे छोटे नाही जम दूत कर सुमा प्या बोला छूट कमावे अपराध न हो जाए बहुत हया असाद रोबजा तन नोबजा संत दुखन अपना सीमा खे जिसन वाजे आप संजया नान दास खंड लाए राखे कर कृपा पा ब्रह्म आओ राम कुली महला पंचमा ऐसा पूरा गुरुदेव सहाय जा के सुन व्यथा ना जाई राहो दर्शन बेग तो न्यालो जा की दूर कटे जम जालो चन गुस्से मेरे मन के कौश वरे सगले तन के जाके मत राखे आतो ब्रह्म नाथ को नाथ पाथ उदारण कृपा निदान सब जय कुरान निर्व संत दे जसदान तुझ पुकार से अभिमान एक ते साध के संग पवन से नाम के रंग गौर परमेश्वर सगन वासु कट कट रिया कुंदास दास दे तारो प्रभवास नितना चित सच और दास राग राम की मल्ला पन्मा कर दूजा दुब दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गावो राम के गुण गीत नाम जत परम सुख पाई आप गुण मिटै मेरे मीत राव गुण गाव तो प्रगासो चन कमल माए हुए नवासो संसंग में उदार नन भज तिरस पार

जिन लाया हुए थी कुंगरी बजाए जोगी जिद कुंगरी आंद बाजे हर चोर आए ले बलाए राव सा संतो पात का चोली जोगी अमृत ना बहुत भाई ध्यान कर डंडा जोगी सिंजी सुत बजाई मन दिल करवासन वैसे जोगी ता तेरी कल्पना जाई का नगरी में मंगन जाड़े जोगी ता ना बल्ले पाई तिंगरी ध्यान लागे जोगी ता सच बल्ले पाई ईद गिरी संत ना विजो मान बिचो जाई भो भो दो पत लाए जोगी अर कर डंडी गौर मोहे ता दंदी बाजे नवेदुबदा तिसना खंडी हुक्म हुए सो जोगी की एक सोच लाए सहसा टूटे निर्मलो वे जो जो तपाए नदिया सब कुछ मन से आसिति जत लाए सतगुरु नाम तेरी भावनी लागे ताए सोजी पाए जाग नौ वे जोगी कुटुंब छोड़ परवण करे ग्रह शरीर में हर हर नाम गुरु सदी अपना हर भराव लाए ये हो जागत मिट्टी का पुतला जोगी समय रोग बड़ा तृष्णा माया निक जन पे कर जोगी रोग न जाय गवाया हर गना खुद जोगी जिसनु मन वसाए गुरुमय सोई बूझे जो सो पाए जोगे का मार्ग वेख मैं जोगी जिस न करे सो पाए अंतर बार एको वेखे बिचो भरम चुकाए मेन वजाए कुंगरी बाजे जोगी जा कुंगरी बुझाए कह नान मुक्त होए जोगी सचे रह समाए राम कली महला तीजा भक्त जन गुरु मुंजाता सतगुरु बूज बजाई संतो गुरु दे बड़ियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सो जय काम क्रोध बिचों जाई आप छोड़ नाम लिवलाई ममता सब जलाई जुते जुते विनसे अंत नाम सगाई सदा हजूर दूर न देखो इचना जिन चाई सच्चा सर्वे कटंतर सच्चे सिओ लिवलाई सत्संगत मैं नर मोलक देवे बड़े पाग पाया जाई पर में भूले सगो सिवे मारा कोई कटाई बिना मचा भूली फिरती फिरता जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई अंडे पागन जोग न पाई सगनी में आसन वैसे गो सब जोग पाई

पनमा जी जानतो सब के प्रभु सक तुम्हारी धारणा हो मनोहर के नाम उदाहरण आओ किनमें तब थाप है कुदरत हो सब करते के कारण काम करो लो चूटन दाओ साधु संग विदान नाम च मन निर्मो वह सुख सुख दान पसन विजो प्राणी तिया न हरन सुख सहज मन की विता तुम्हें आगे साना तू दाता सुमना जिया का अपन किया पालना अनकवार कोड जन पर नानक मंजे वारना राम कली महला पंजमा अठ बदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेट पाप सुमना से गुर स्यो दे मलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पाप ब्रह्म का नाम लड़ाई अंते हुए सिखाई राहो सगल दू का डेरा परना संतूर मुख लाई पत्नी के कन भीतर ज्ञान देर उंजाई कन का समरस नरनाई बंधन तोड़ चरण कम दड़ाई एक साथ दिल बलाई अंत को बखे बिख्या काडो सा सा सुन आई जन्म का सच सचू का वोड़ न तू ताई

एक अंकार नरन जनर भाव साव जल तारिया सुमाए पाव धन पाव तो दिन ना नानक जाचे माही राम कृष्ण महला पंचमा श्लोक सिखो साधु प्यारे हो जन्म मन की टेक मोज सदा सुही ना सिमरत एक मंत्र तारा प्यारा प्रेम पात बने आई संतो सदके नवाई संतो और नाम लाओ दास को दिया सोली सुन लाई संतो राव खोज तो खोज लालिक रवि संतर्गत वाविजन राजा ही संतो आजुआ दिया भी उसे जिया का सुदाई संतो आप व्यंत नि पाई है पूरी आस उठाई संतो मीसा जनो माल जो बनाओ सुत वर नानक बाप मेरी माई संतो राम करी मला पंजवा मर करम राम नाम चतारी कुम केर माओ हथ बिकड़ी गुरु बा नानक पार उतारी राम

से महंकारी साधु संगत है फल पाया एक केवल नाम धारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब भक्ति जो तुम्हारी तुम सम्राट तगत गोचर रव्या कमरारी कीमत कौन करे तेरी कर दे प्रभु अंत न पारा बारी नाम दान नानक वडियाई तेरे संत जना ए नारी राम कली महला तीजा नंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरे माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु तब पाया सह सिति मनोजियां बधाइया रक्त परिवार परियां शब्द गा बनवाइया शब्द वत गाओ हरि केरा मंजने वसाया कह नान अंध हुआ सतगुरु मैं पाए मन मेरे हाथ सदा रो नाले हर नाल रो तुम मन मेरे दुख सब विसारना गी करो करे तेरा का सब सुवाना समना गिला समना स्वामी सु क्यों मन वसारे कह नानक मन मेरे सदा रो नाले साचे सह भाव क्यों नहीं करते रह करता तेरे सब जय जे दे सो पावे हदा से सलाह तेरी ना मनु सावे नाम जिनके मन ने वसिया वाजे सब गनेरे कहना सच साहब क्यों नहीं कर तेरे सचना मेरा दारो साच नाम दार मेरा जन बुकासा गुवाइया कर सा सुनवाई वसिया जिन चसा पजाइया सदा कुरान किताब रटो जिदिया बड़े आइया कह ना सुनो संतो तत्रो प्यारो सचना मेरा दारो वाजे पांच सौ चितकर सभागे कर सभागे साधु वाजे कला चित कर धारिया पांच तो दवासी ते काल कंटक मारिया

तेरे चरण आए तिस नाल क्यों चित लाई है। ऐसा कम मुल न की जंत पुछताई सतगुरु दे सुन तू वे तेरे नाले कह नानक बन प्यारे तू सदा ससमाले अगम गोचरा तेरा अंत न पाया अंत न पाया किने तेरा अपना तू जाने जी जम सब खेल तेरा क्या कुआ गुखाने आख दे वे कह सब तू है जिन जग तू पाया कह न सदा कमाया तेरा अंत न पाया सुनना मुंजन खोते तू अमृत खोते पाया पाया अमृत गुर कृपा किनी सच्चा मन वसाया जी जम सब तू तो पाया वेख बार सुनवाया लाभ लो हंकार चुका सत गुरु भला पाया कहे नाम जिस आप तुठा जिन्हें मृत गुरते पाया भगत की चाल नाई चाल नाई भगत केरी बिख मार चलना लव लुहकार तसना बहुत नहीं बोलना खाने दिखी वालो निकी तमार गजाना गुरफता जिन्हें आप तैयार वासना समाणी कहना चाल भगत जुग हो जुग नाली जी तो चलाए तिम चले स्वामी और क्या जाने गुरु तेरे ये तो चलाए ते मैं चलाए जिना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाया रसाते आवे जिसने कथा सुनाई अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कहना सिर साहब जो पावे तिवे चलावे ये सोए लाओ सब सुहाओ सब सुह सोए लाओ सतगुरु सुनाया तिनके मन मसिया तुनू लिखया आया कि फिरे कनेरे कर आए गला गली किने ना पाया कह नानक सब सोला सतगुरु सुनाया पे तो ऐसे जना जिन्हें आते आया अंते आया पे तो गुरु जिन्हें ते आया वित माता पिता कुटुंब से हो पे संग सुभाया कहते पर सुनते पे जिन्हें मन वसाया कह नान से वो बेता जिन्हें कर्म वार हत्या कर्म से सुनना उजय बिन सस सज से सना जाए ना जाए ससा किते संयम रहे कर्म कमाए सहज यो मलिन है कित संयम दोता जाए मन तो वाहो सब लगवा से हो चतला हे कहना गुरसा सहजूजे सही बुझाए जियो मेले बारो निर्मल बारो निरो जियो तमले तिन्नी जन्म जुए हरिया तिसना वड्डा रोग लगा मन मनो विसारिया वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बतालिया कहना जिन सतरिया घूड़े लागे तीन जन जुए हरिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो निरो जियो निर्मल सद कणिक माणी कूड़की से पहुंचे नहीं मनसा सस माणी जन्म रतन जिनी कटिया पले से बन जा रे कह नानक जिन मन निर्मल सराय कुनाले जे को सिख गुरु श्री सन्मुख होवे होए ता सन्मुख सिख विजरे गुरु नाले गुर के चरण हृदय अंतरात्मा संभाले आप चढ़ सदा रहे परमे गुरु ना दाता अवर न जाने कोय कह न सुनो संतो सुख सतन मुख होय जे को गुरते वे मुख होय मैं सतगुर मुक्त ना पाए मैं सतगुर मुक्त ना पावे पावे मुक्त न उठे वे कोई पूछो वे किया जाए न कजो नहीं परमाए बिन सतगुर मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लव चरनी सतगुर साहब सुनाए कहना विचार देखो मैं सतगुर मुक्त न पाए।

वाणी पियो मृ सदाओ रहो हर रंग जप सारंग वाणी कहनो सदा गाओ ये सच्ची वाणी सात गुरु बिना और कच्ची है बाणी बाणी कच्ची सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आ भवानी हर हर ने तो कह रसना क्या किसने जानी चेचन का हिर लिया माया बोलन पैर वाणी कह ना सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी गुर का सब रतन आई रे जे चढ़ाऊ सब रतन जित मन लाया सुहाओ सब सिती मन मिलिया सचे लिया पाओ आप ही रतन आप जितू दे बुझाए कह नानक सब रतन है हीरा जे चढ़ाओ शिव सख्त आप आई के करता आपे हुक्मरता हुक्मरता आप वेखे गुरम किसे बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त हो शब्द मन बसाए गुरमुख हो जिन आप करे सो एक सो लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमर सातर पुन पाप विचार दे तत्ते सा न जानी तत्ते सा न जानी गुरु वाजो तत्ते सा न जानी ते गुणी संसार परम सुताओ सुतिया रहन बयानी गुर के पास ऐसे जन जाग है जय राम मन बसया बोले अमृत वाणी कह ना सो तपाए जिन अंदर लिव लागे जागत रहन बिहानी माता के उदर में प्रपाल करे सो क्यों मन विसारी है मनो के बजारी वरदाता जे अगन आहार बचाव है किसन कपो ना सकी जिसन अपनी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी ना आप लाए गुरु सा संभालिए कह नानके वरदाता सो क्यों मन वसारी है जैसी गुरु धर्म है तैसी वार माया माया के नाम सावे को यही कहते खेल रचाओ जात पाना था जमया परिवार भला पाया ले छुटकी लगी मां दिसा माया मरता है माया जित वर विसरे मोप जय पाओ दूजा लाया कह नानक वरसाए जिन लिब लागी तिन विच माया पाया हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए मुल न जा पाया जाए किसे बिटो रहे लोग बिलाया स सतगुरु जी मिले तिसनु सिर सोपिए बिचू आप जाए जिदा जो तिस मिल रहे हर वसे मनवाए हर आप मुल्क है भात ना के नानका जिनार पल्ले पाए रास मेरी मन मंजारा रास मेरी मन मंजारा सतगुरु ते रास जानी हर हर न जपो जियो लाहकड़ो दिहाड़ी तन ना मिलिया जिनार पे पाना कह नानक रास मेरी मन हुआ मंजारा ऐस ना तू अनस रास रही तेरी प्यास ना जाए प्यास न आए होर तकते जिच रस भले न पाया रस भले पिया रो न तिस न लागे आए ये हरस गर्मी पाई है सग मिले जित आए कह न रखो अनरा विसरे जा हर विसे मनवाए ये शरीर मेरिया हर तुम्हें जोत रखी ता तू जग में आया हा जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया आपे माता आपे पिता ज्यो जियो पाए जगत दिखाया गौर प्रसादी बूझा चलत हुआ चलत नजरी आया कहना सिटका मोर रचा जोत रखी ता तू जग में आया मानु चाओ बयाओ प्रभु आगम सुनिया हर बंगल गाओ सगी ग्रह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नस गए सो दुगना व्यापे को चन लगे दिन सभागे अपना फिर जाप पै अन हद वाणी गो शब्द जानी हर नाम हर रस पोगो कह नानक प्रभाप मिलिया करण कारण जुगो ए श्रीरा मेरे आए इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाया ते कर्म कमाया तो श्रीरा ता तू जग में आया जिन तेरा रचन रचया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक शरीर परवान हुआ जिन सतगुर से हो चित लाए नेत्रों मेरे हो हर तो मैं जो तरी हर बना अपना देखो कोई हर अपना देखो कोई नदरिया निहालिया वे संसार तुम दे दे यो हर का रूप है रूप नदरी आया गौर प्रसादी बुझिया जब कार एक है हर बन अवर न कोई कह नानके नेत्रों से सतगुरु मिले देव दृष्ट होई ईसो न मेरे सच सुने नो बटाए सब सुने नो बटाए श्री लाए सुनी सत सुनो सत बाणी जिस सुनी मंत्र हरिया वार सुना रस माणी
ਸੱਚ ਅਰਗ ਵਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਗਈ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨਾ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸੱਚੇ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ। ਹਰ ਯੋਗ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪਰ ਡਕੀਏ, ਦਸਵੇਂ ਕੋ ਤਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈ ਭਾਵਨੀ ਕਮ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਓ ਨਾਮ ਲਿਦੋ ਤਿਰੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖੇ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਲਾਵ ਸੱਚੇ ਕਰ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਲਾ ਘਰ ਸੱਚੇ ਜਿੱਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵ ਹੈ। ਸੱਚ ਧਿਆਵੇ ਜਾਤ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਮੁਜ ਨ ਵਜਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਸੋਇ ਲਾ ਸੱਚੇ ਕਰ ਗਾਵਹੇ। ਅੰਨ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਦਾ ਜਨ ਬੈ ਸੱਚੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ।

राम कली सद एको ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोय भगत वो चलता है लोय जियो गो सब समा अपन जाने कोई जियो अपन जाने सब गुर के एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आकार चलनार हर नाम ना समाया जग अमर अटल तो ठाकुर पाव देते हर पाया हर पाणा गुरु पाया अगर जावे कृपा जियो सब करे हर पै बेनती मेरी पैर को अरदा जियो पैर को हर जन केरी हर नाम देव निरंजनो अंचल जावे बेली जमदूत काल कंजनो सतगुर की पाक बेनती पाई हर प्रभु सुनी अरदा जियो हर तार कृपा सतगुर मिला तन धन गए सभा जियो मेरे सिख सुनो बुत पाईओ मेरे हर पाणा आओ मैं पाजियो हर पाणा गुरु पाया मेरा आप प्रभु करे सभा जियो भागत सतगुर प्रभु सोई हर प्रभु पाणा पावे आनंद बजे बजे हर आप गल मिला तुझ पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निजा जियो तुर लिखा प्रवाणा फिर नाई गुर जाए प्रभा जियो सगुर पाने अपने वह परवार सदाए महात्मा पिछे कोई रोसी सुमे मूल न पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पहनावे सत प्रगो दैराज वाप टिकाया सब सिख मंद पुत भाई रामदास रामदास पैरी पा सतगुरु लिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो किस गोपालपन सद्यो हर हर कथा पढ़े प्राण जियो कथा पढ़िया नाम सुनिया विवाण हर रंगर भावे पिंड बदल क्रिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुरु बोलिया जब मिलया पुरुष जाने जियो रामदास जोड़ी तलक दिया गो सब सानियो सतगुरु चे बोलिया सिखा मन लिर जाए जियो मोरी पोषण मखोया रामदास पैरी बाजियो सब पैरी सतगुरी जेते गुरु आप राख्या कोई कर्ब खिले नावे सतगुरु अन्न वाया हर गुरे भाणा दी बढ़ाई तुर लिखा लिखर जा जियो कहना सुनो सुंदर सुनो संतो सब जगत वैरी पाई जियो राम कली महला पंजमा चंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजना निकट को लोया मेरा साजना जानड़ा जानड़ा नैन लोया नैन लोया कटगट सोया तो अमृत प्रे गुड़ा नाल बुंदा नै सुगंधा सुमन जाने मुड़ा माया मद माता उची माता मिलना जाई परम दड़ा को नैन गुरु बिन नहीं बूझे आसा गोविंदा मेरे गोविंदा प्रणंदारा मेरे गोविंदा कृपाला मेरे कृपाला दंद तारा मेरे कृपाला दंद तारा प्रभारा कटरंतर सोहनिया एक दस तारी संसारी जी जंतले मोहनिया सुनरा के सो सच भागे गुर का सब बिचारा कौना सो प्रभ को पाणा तिसी को प्रभ प्यारा मोणु प्रभ माणु प्रभ का माणु जानो प्रभ जानो स्वामी सुरस जानो सुख जाना सत प्रणाम तू वर का नाम माँ चात वाण सर मण जिसके भाव मता ना तिनि पा तिन ते आसो ते का माण कौ नानक तेरे सख्त नवासी सच तेरे दीवान मंगलार मंगला मेरे प्रभु कै सुनिए मंगला सोहेलड़ा प्रभ सोहलान तुनिए सोहेलड़ा आन हद बाजे सब दगाज नत नो जे बधाई सोर त्याये सब कुछ पाए मरण आवे जाय चूकी प्यासा पुन आसा गुरु मन रुणिया कौ नानक घर प्रभ मेरे गाय नितन मंगल सुनिया राम कुनी महला पंजमा हर हर त्याय मना खिन ना विसारिय राम रामा राम रामा कंटुर धारी और धार वार हर पुर कपूर नो पा ब्रह्म नरंजनो ऐ दो करता पावरता दूसरे दो पाप खंड जगदीश गोपाल मा दो गुण गोविंद विचार नानक मिल संग साधु सन चतारी चन कमल धार जन

सायण किल्पे खन्ना नाम पुन जन नामो जम की तरासुरा जनकी चन कमल वासरा गुण बयान स्वामी तेरे कोई ना जाने दे चल ते आसन भगत भवानी जी जन सत आवे पवर कपत वर मिसरा सर्व जज के दाता करना मैं जगदीशरा साधु संसवन सोई जिसे प्रभु जी मान ही बिनवत ना करो कृपा सोई तुए पछाणी